0: मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर आरजे अदनान आपके साथ है आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए। एग्जैक्टली अब 7:12 का वक्त हो चुका है और आप सुन रहे हो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए नई सुबह की ताजगी भरी सौगात। सुबह का मतलब सिर्फ सूरज का निकलना नहीं होता, सुबह का मतलब होता है एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नया मौका खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का। कभी सोचा है आपने कि हर सुबह हमें ये कहने आती है कि चलो फिर से मुस्कुराना शुरू करते हैं, जो कल नहीं कर पाए वो आज कर लेते हैं, किसी को माफ नहीं कर पाए तो आज दिल हल्का कर लेते हैं, खुद से जो वादा तोड़ा था उसे आज निभाने का प्रयास करते हैं। और हाँ, सुबह सुबह की वो चाय की चुस्की, उफ यार, वही तो असली मायने में गुड वाली मॉर्निंग का स्वाद होता है। तो चलिए फिर आज का दिन थोड़ा मुस्कुरा के शुरू करते हैं। थोड़ा क्यों यार, बहुत ज्यादा मुस्कुरा के शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल आप लोग ना तो मुस्कुराना छोड़ दिए है, वो देखो टेंशन के मारे आपके चेहरे की रंगत उड़ गई है और सुबह सुबह आपको लगता है कि यार क्यों ही आज सुबह हुई। तो एक सुबह की शुरुआत मुस्कान की चमकान के साथ कीजिएगा ताकि आने वाला दिन पूरा मुस्कुराते हुए आपका गुजरे। तो चलिए फिर आज थोड़ा एक्स्ट्रा मुस्कुराते हैं और इस दिन का आगाज करते हैं। आपकी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो सबसे पहले खुद का बनाइएगा। और आपको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग कहता है आरजे अदनान। कुछ देर के बाद लौट कर आता हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: Only on MGM 90.8 FM.

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: हर सुबह अलार्म बजता है और उसके साथ एक और आवाज आती है, आज नहीं यार कल से शुरू करूंगा, कल जिम, कल पढ़ाई, कल बिजनेस, कल सपना, और देखते ही देखते ये कल सालों का सफर बन जाता है। एक बार एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बेटा जिंदगी में सबसे महंगा लफ्ज कल होता है। मैंने पूछा वो कैसे? वो मुस्कुराए और कहा, क्योंकि कल के भरोसे लोग अपने आज के सपने खो देते हैं। सोचिए, एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा वक्त 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा वक्त आज है। परफेक्ट मौके का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। जो लोग आज एक कदम बढ़ा देते हैं, कल वही लोग दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। याद रखिए, आपको हर दिन 100 कदम चलने की जरूरत है, बस एक कदम लेकिन रोज, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। इसलिए आज अपने सपने को एक और तारीख मत दीजिए, बस शुरू कीजिए, चाहे धीरे ही सही लेकिन रुकना मत, क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत तो कर दी थी। सो याद रखिएगा और शुरुआत कीजिएगा, बस कल पर मत टालिएगा, एंड बाकी सुनते रहिएगा
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

Good morning, friends. Myself, RJ Adnan, and you are listening MGM 90.8 FM. और एक छोटा सवाल आपसे आज ये है कि आपका फोन अभी कितने परसेंट चार्ज होगा, 90, 80 या 100? हम फोन की बैटरी 20% होती चार्जर ढूंढने लगते हैं, पावर बैंक साथ रखते हैं, चार्जिंग केबल खोने नहीं देते, लेकिन एक और बैटरी जो कि हमारे साथ 24 घंटे होती है वो है हमारी बॉडी, और उसकी चार्जिंग कौन करेगा? बड़ा सवाल है। कम नींद, ब्रेकफास्ट स्किप करना, पानी कम पीना, पूरा दिन चेयर पर बैठना और स्ट्रेस धीरे धीरे हमारी बॉडी की बैटरी को लो कर देता है, और फिर हम कहते हैं आज बिल्कुल एनर्जी नहीं है। दोस्तों, बॉडी को चार्ज करने के लिए किसी चार्जर की जरूरत नहीं होती, उसका चार्जर है अच्छी नींद, हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा सा सनलाइट, पानी और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम। तो आज से सिर्फ फोन की बैटरी का ही नहीं, अपनी बॉडी की बैटरी का भी परसेंटेज चेक कीजिएगा कि आप वाकई चार्ज है या सिर्फ चल रही है आपकी जिंदगी। याद रखिए, फोन डिस्चार्ज होगा तो चार्ज लगेगा, लेकिन अगर बॉडी थक कर रुक गई तो जिंदगी पॉज हो जाती है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और आप सुन रहे हैं सेहत की वही बातें जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं अपनाने के लिए भी होती है। स्टे ट्यून्ड।

0: is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराव को बरार जी अदनान आपके साथ इन द शो एमएस 20 नो मोर सैंडी और बात कुछ ऐसी कि देखिए जनाब आपकी फरमाइश पूरी करना मेरा काम है। सो आज की फरमाइश आई है जहीर पठान की तरफ से इस गाने के लिए।

क्या बात है यार, लता मंगेशकर जी की आवाज में जानकारी इस फिल्म से गाना है। सो चलिए फिर जहीर भाई की फरमाइश पूरी करते हैं। हो तुम जिस तरह की फरमाइश असेल तर व्हाट्सएप करो नक्की कड़वा, व्हाट्सएप करा 9359320801 9359320801। जल्द से जल्द अपनी फरमाइश बताइए और पूरी कीजिए। फिलहाल जहीर भाई की फरमाइश पर अगला गाना आपके कानों पर आ रहा है। स्टेडियम विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE और COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: एक टाइम था जब हमारे जेब में ना तो कैश ही कैश होता था, और आज का एक टाइम है बस हमारे जेब में यूपीआई यूपीआई है। अगर किसी को कैश चाहिए होता तो छुट्टी के लिए भागम भाग करना पड़ती थी, फिर एटीएम की लाइन, कैश विदड्रॉ करो, वॉलेट में रखो, और पेमेंट के टाइम पर फिर वही टेंशन, यार छुट्टी हो गई क्या सामने वाले के पास। लेकिन आज क्या है, 10 की चाय हो या फिर 100 का ऑटो हो या फिर 5000 की शॉपिंग का बिल हो, बस फोन निकालो, QR स्कैन करो, पिन डाल दो, टिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। और यही छोटी सी टिंग वाली साउंड ना तो आज इंडिया की डिजिटल रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा बन गई है, एक पहचान बन चुकी है, क्योंकि इंडिया का फेवरेट पेमेंट पार्टनर UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तकरीबन इसको 10 साल हो गए हैं। जी हाँ, 2016 में UPI की जर्नी शुरू हुई थी। शुरुआत में शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था ऑनलाइन पेमेंट कौन करेगा इतना, और सबके पास स्मार्टफोन कहाँ से आएगी। लेकिन 10 साल में जो बदलती हुई तस्वीर हमने देखी, डिजिटल इंडिया तो हो ही रहा है, धीरे धीरे हर एक दुकान पर हमें UPI पेमेंट दिखाई देती है। सब्जी वाला, किराना शॉप, रेस्टोरेंट, मॉल, ऑटो रिक्शा, कहीं कहीं तो मैंने जो भीख मांगते थे उनके पास भी UPI पेमेंट देखी है। तो कुछ इस तरीके से ना तो QR कोड पूरे इंडिया में फैल गया पिछले 10 साल में। पहले पेमेंट करने के लिए बैंक डिटेल चाहिए होती थी, और आज बस एक मोबाइल नंबर चाहिए यानी कि UPI ID, और पैसे एक सेकंड में इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। और आज हम कहीं भी शॉपिंग करने गए तो पहला सवाल क्या पूछते हैं, छुट्टा है ये नहीं, QR कोड है ना आपके पास। बाय द वे, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंडिया की स्टोरी है जहाँ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हर आम इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा बन गई है। UPI ने हमें ये भी सिखाया कि डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ बड़े सिटीज और एक्सपेंसिव गैजेट नहीं, डिजिटल इंडिया का मतलब है एक छोटे दुकानदार के हाथ में स्मार्टफोन, एक QR कोड और कस्टमर के लिए इजी पेमेंट। सो 10 ईयर ऑफ UPI कन्वीनियंस एंड डिजिटल इंडिया, और जर्नी अभी बाकी है। हैप्पी 10 ईयर ऑफ UPI इंडिया एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: कभी कभी
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह.

जिससे मोहब्बत करते उसी के दाम बढ़ जाते, फिलहाल यही सिचुएशन चल रही है। जी हाँ, मतलब मोहब्बत किसी इंसान से नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मेरे जैसे चाय लवर्स ने चाय से मोहब्बत की है। और अभी हमें पता चल चुका है कि यार चीनी के दाम भी अब आसमान छू रहे, 70-72 कहीं की 75 रुपए किलो चीनी हो गई है। और इस वजह से धीरे धीरे अब ये चाय के भी दाम बढ़ने ही वाले है। तो वही ना कि हमने मोहब्बत की है चाय से और अब उसमें चीनी डालते हैं तो उसके दाम बढ़ गए, यानी कि चाय के दाम भी बढ़ने वाले है। गवर्नमेंट ने हमारी जिंदगी बचाने के लिए चीनी के दाम बढ़ाए है। सोचिए ना, आप कुछ दिनों में त्योहार शुरू हो रहे, फिर हर कोई इंसान ना मिठाई खाएगा, फिर पेड़े खाएगा। मतलब इंडिया में चाहे फिर दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, कोई पैदा हुआ हो, कोई मर गया हो, कोई पास हुआ हो, किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने घर लिया है, किसी का दिल टूटा है, किसी का दिल जुड़ा है, किसी की शादी हो गई है, किसी तो सबसे पहले मुंह मीठा करते हैं। और चीनी के बगैर मिठाई अधूरी है। तो डायबिटीज के पेशेंट बहुत बढ़ रहे थे, शायद से डायरेक्ट असर हम सभी पर हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा, चलो यार ये लोग ऐसे तो मान नहीं रहे, हम कह रहे इनको डायबिटीज बढ़ रहा है, शक्कर कम खाओ, तो हम क्या करते दाम बढ़ा देते है। गवर्नमेंट को हमारी इस वजह से इसके दाम बढ़े हैं। और हाँ, बस डायबिटीज नहीं, अब देखो हाँ इंडिया में ना तो बहुत सारे मोटे लोग भी बढ़ रहे थे, वजन बढ़ रहा था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि हम ना पेट्रोल में कुछ मिलावट करते ताकि लोगों की गाड़ियां खराब हो जाए और अपने आप पैदल चलना शुरू करे ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। तो यही इसके पीछे एक मकसद है और ये हमें बहुत लेट समझ में आ गया। तो थैंक यू गवर्नमेंट ना हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। खैर आप क्या ही करें, चाय की तो तलब लगी है। आज सुबह मैं चाय की दुकान पर चाय पीने गया था, भाई ने 2 रुपए बढ़ा दिया, 10 की चाय 12 को हो गई है। क्या ही बोले, बट क्या करना है, जिससे मोहब्बत होती है तो हम पैसे को नहीं देखते। आप भी जरा चाय की जिसकी लेकर आइए, मैं भी लेकर आता हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एक ऐसी दुनिया जहाँ पर किसी महिलाओं को बस इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था क्योंकि वो बस महिला थी। और इसी बात से जुड़ा है आज के दिन, दैट्स कॉल्ड वुमेन्स इक्वेलिटी डे। 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वेलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की रूट ना तो अमेरिका की वुमेन्स सफ्रोज मूवमेंट से जुड़ी है जो कि 26 अगस्त 1920 को यूनाइटेड स्टेट में हुई थी और वहीं से शुरू हुआ था फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार। और इसी घटना को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स इक्वेलिटी डे पूरे दुनिया भर में। तो आज हम वही डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इंडिया में भी। और हाँ, इक्वेलिटी की जर्नी सिर्फ वोट देने के राइट तक लिमिटेड नहीं है। इक्वलिटी का मतलब होता है एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी, करियर में इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पेक्ट और अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने की फ्रीडम। क्योंकि इक्वलिटी का मतलब वीमेंस को किसी से ऊपर रखना नहीं बल्कि उन्हें भी वही राइट, वही अपॉर्चुनिटीज और वही रिस्पेक्ट देना होता है जो एक इंसान होने के नाते हर किसी को मिलनी चाहिए और उसका हक है। तो आज वीमेंस इक्वलिटी डे पर एक सवाल खुद से पूछिए, हम इक्वलिटी की बात सिर्फ कर रहे हैं या अपनी हर दिन की लाइफ में उसे एक्चुअली फॉलो भी करते? बात गहरी खुद से पूछेगा और महिलाओं को इक्वल रखना हम सबका फर्ज है, अधिकार है। स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होमियोपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: एडमिशन कॉन्टैक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
7: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765892991।

26 अगस्त यानी कि विमेन इक्वेलिटी डे। लेकिन आज एक सिंपल सा सवाल है, क्या हमारी सोसाइटी में महिलाओं को सच में इक्वेलिटी मिलती है क्या? कानून कहता है कि बराबरी का हक है, एजुकेशन का राइट है, काम करने का राइट है, अपनी चॉइस से लाइफ जीने का भी राइट है यानी कि अधिकार है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर क्या देखते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी डिफरेंस हमें नजर आता ही है। एक लड़के को लेट नाइट बाहर रहने पर कोई कुछ नहीं कहता और कहता है कि ध्यान से जाना, और वही बात एक लड़की की आती है तो इतनी रात को कहां बाहर जा रही है, क्यों जा रही है। लड़का करियर चूज करे तो एम्बिशंस, लड़की करियर चूज करे तो घर का क्या होगा, ये एक सवाल होता है। लड़का अपनी बात रखे तो कॉन्फिडेंस, लड़की अपनी बात रखे तो बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत खुद को शानी समझती है, ऐसा हमारी सोसाइटी कहती है। तो सवाल ये नहीं है कि वुमेन्स को इक्वेलिटी मिलती है या नहीं, सवाल ये भी है कि हम उन्हें इक्वेलिटी देने के लिए तैयार है या नहीं। इक्वेलिटी का मतलब वुमेन्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देना नहीं होता है, वरना बहुत लोग ये सोचते हैं यार इक्वेलिटी का मतलब होता है महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट देना वगैरह वगैरह। लेकिन इक्वेलिटी का मतलब है सेम रिस्पेक्ट, सेम अपॉर्चुनिटी, अपने जिंदगी का डिसीजन लेने का सेम फ्रीडम। और शायद इक्वेलिटी की सबसे बड़ी शुरुआत किसी लॉ से नहीं, हमारे घर से, हमारे सोच से और हमारे बिहेवियर से होती है। तो इस विमेंस इक्वेलिटी डे पर एक बात खुद से जरूर पूछे, मैं इक्वेलिटी की बात करता हूँ लेकिन क्या मैं इक्वेलिटी को अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ और महिलाओं को उतना ही अधिकार और उतना ही इक्वल समझता हूँ क्या? खुद से सवाल पूछिएगा, सभी लड़कों से मैं ये कह रहा हूँ, समझे? जवाब आपको अपने आप मिलेगा। इक्वेलिटी का मतलब ये नहीं कि लेडीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, इक्वेलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीजें हम करते हैं वही चीजें, वही काम, उतनी ही सक्सेस और हर एक चीज महिलाओं को भी देना, दैट्स कॉल्ड इक्वेलिटी। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765822991।
4: अरे किती गाडी पळवतोयस, स्पीड काय?
5: 90.8।

0: इन्हें अपने स्टूडियो में कोई डॉग नहीं आया है, लेकिन आज इन्हीं का दिन है तो उसी पर हम बात तो करेंगे ही ना, क्योंकि डॉग्स ऐसे होते हैं जो बिना कहे ना तो बहुत सारा प्यार हमें करते हैं। और आज है 26th of August, यानी के इंटरनेशनल डॉग डे। डॉग्स को हम सभी लोग इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं, और सच को तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सच भी है। एक डॉग आपको बिना जज किए एक्सेप्ट करता है, आपका मूड बिना पूछे समझ लेता है, और आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, और जब आपको देखता है तो अपनी पूछ हिलाने लगता है। लेकिन आज का ये दिन सिर्फ डॉग्स की क्यूट फोटो सेलिब्रेट करने का नहीं है, हमारे आसपास ना तो ऐसे बहुत सारे डॉग्स हैं जो बेघर होते हैं, जिन्हें खाना पानी घर बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और उन्हें बस जरूरत होती है थोड़े प्यार की। आपने एक बात नोटिस की होंगी, आपके गली मोहल्ले में जो डॉग्स होते हैं ना, उन्हें ना तो बस आप प्यार से उनके सर के ऊपर हाथ फेरिएगा या फिर एक रोटी दीजिएगा। जब भी आप घर के बाहर निकलोगे, गली में रहोगे ना, तो आपके पास आएगा वो और दुम हिलाएगा। जितना आप उनसे प्यार करोगे, उनको डेली खाने को दोगे, तो यार उनसे अच्छा दोस्त आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। और बाकी आपकी गली की तो सिक्योरिटी फ्री में हो ही रही है, तो बस इन डॉग्स को चाहिए क्या होता है, प्यार चाहिए होता है। आज अगर आपके आसपास कोई डॉग है तो एक कटोरे में पानी जरूर रखिए, पॉसिबल हो तो कुछ खिला भी दीजिएगा। पॉसिबल क्या यार, खिलाना ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें अननेसेसरी परेशान या डिस्टर्ब मत कीजिए, ये अक्सर हम करते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, प्यार बस उन पेट एनिमल्स के लिए नहीं जो हमारे घर पर रहते हैं, जो कि अब पैसों से हम खरीद कर लाते हैं, प्यार हर एक एनिमल डिजर्व करता है। प्यार उनके लिए भी होना चाहिए जो हमारी गलियों में हमारे साथ रहते हैं और हमारे गली की हिफाजत करते हैं। तो हैप्पी इंटरनेशनल डॉग्स डे एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: बेहतरीन तरीके से कमबैक हो गया है इमरान हाशमी का। जिस तरीके से आवारापन टू ने आजकल कमाई की है तो लग रहा है कि कमबैक तो परफेक्ट हो गया है। और वो एक कहते हैं ना कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, ये साबित भी हो गया है क्योंकि 19 साल के बाद आवारापन टू आई है। जब आवारापन पहली आई थी ना 2007 में, तब ये सबसे फ्लॉप फिल्म थी, तब ना तो फिल्म चली नहीं थी। उसके बाद फिर ये टीवी पर आई और उसके गाने हिट होने लगे, फिर धीरे धीरे लोगों को ये फिल्म की अहमियत और ये फिल्म कितनी अच्छी है वो समझ में आ गई। वैसे एक बात तो है यार, वक्त गुजरने के बाद ये लोगों को अच्छी चीज़ों की कदर होती है, वैसी फिल्मों के साथ हो गया। एंड फिर इंतज़ार था आवारापन टू का और फाइनली वो रिलीज़ हो गई है। और जिस तरीके से उसने कमाई की, हाउसफुल शो किए, तो फिलहाल 142 करोड़ के ऊपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है आवारापन टू का। तो अब ये कलेक्शन ऐसा ही रहेगा या थोड़ा कम होगा, ये तो आप डिपेंड करेगा टॉक्सिक पर। मतलब अब दो दिन बाद टॉक्सिक रिलीज हो रही है एंड जैसे टॉक्सिक रिलीज होगी तो अपने आप इसके शोज कम हो गए। बट उसके पहले तो आवारापन ने बहुत अच्छी कमाई की है, सुपर डुपर हिट का टैग अपने नाम किया है। बाय द वे टॉक्सिक के ना और एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गए, तो जिन्होंने अब तक नहीं किए तो कीजिएगा क्योंकि यश की जो बेहतरीन फिल्म है जिसका सभी को इंतजार था और ट्रेलर ने तो तबाही मचाई है, तो देखने का भी वक्त आ गया है। तो देखा जाएगा कि KGF के बाद टॉक्सिक में किस तरीके का एक्शन हमें यश दिखाएंगे, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। सो आप बताइएगा कि आपको आवारापन टू कैसी लगी और टॉक्सिक का ट्रेलर आपको कैसा लगा। DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: What's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
6: Buy one get one free. होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
7: ही ऑफर फक्त 9 ते 26 पर्यंत। पत्ता, द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

On MTM 90.8 FM. किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है आरजे अदनान। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप जब मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड, सिग्नल।

वेट वेट वेट, अभी जाने का वक्त तो आ गया लेकिन गाना थोड़ा स्कीप हो गया था। बाय द वे 10:54 का वक्त हो चुका है। आरजी अदनान आपके साथ आ गया है फिलहाल आपसे अलविदा लेने के लिए, यानी कि अच्छा चलता दुआ में याद रखना वही कहने के लिए आया हूँ। और आई होप कि आज आपको ये शो पसंद आया होगा, और नहीं भी आया तो आना ही चाहिए यार, मैं तो चला अब अपनी गली। बाय द वे देखो भाई साहब क्या है ना, 26 तारीख है आज और हल्की हल्की से आपको सैलरी की खुशबू तो आ ही रही होगी। कितने खुश नसीब हो ना आप लोग यार जिनको ऐसी सैलरी मिलती है मंथ एंड के मतलब सैटरडे संडे कुछ भी हो जाए एंड तक मिली जाती है 26 तारीख के, 4 दिन में सैलरी आने वाली है। और एक कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनकी सैलरी 5, 6, 7, 10 तक हो जाती है। खैर आप क्या ही करें। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है पता है कॉरपोरेट वालों के लिए, अगर मंथ एंड में कोई त्यौहार आ जाए ना तो भाई समझ जाइएगा कि मतलब इंसान सोचता है भाई पैसे भी नहीं है सेलिब्रेशन भी करना है क्या करे। इस वजह से कहता हूँ वक्त पर सेविंग करते रहिएगा ताकि ऐसे मोमेंट पर काम आ जाए। बाकी मत कहना कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ आइडिया। देखो कुछ मैं बड़ी सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल बात या बहुत बड़ा मंत्र नहीं दिया, बस जाते जाते आपको रियलाइजेशन करवाए कि आपने अगस्त महीना शुरू होने के पहले एक तय किया था कि नहीं यार इस बार सैलरी आने के बाद मैं पैसे सेव करूँगा। अब एंड होते होते क्या ऑन सेविंग का चेक कीजिए। बाकी तो मैं चला अब अपनी गली, मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे, तब तक के लिए टेक केयर टाटा बाय बाय। अरिजीत सिंह की आवाज में सिंगल होने के बावजूद भी दुखी वाली फीलिंग लाने वाला है गाना भी आपके लिए प्ले है। एग्जैक्टली दुआ में याद रखना। टाटा बाय बाय, टेक केयर मेरी जान, एंड स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।

0: Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
4: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
4: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
4: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
5: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
4: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
5: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर. बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
5: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल. स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, दात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
6: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: हेलो एवरीवन, कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल. इस शो में मैं राजश्री अग्रवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट श्री कुकिंग एंड बेकिंग क्लास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज हम देखेंगे ना कि जो चीजें हम डेली खाते हैं, जैसे सब्जियाँ, तो इनके जो छिलके हैं वो हम कई बार क्या होता है ना, कचरा समझ कर फेंक देते हैं. तो आपको बताना चाहूंगी कि जो भी सब्जियां हम खाते हैं उसमें जितने विटामिन्स होते हैं उससे कई ज्यादा विटामिन्स जो है वो छिलके में भी होते हैं. फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये कई मात्रा में छिलकों में ज्यादा होते हैं और उसे ही हम कचरा समझकर फेंक देते हैं. तो जब भी हम हमारे घर में सब्जी बनाते हैं तो अगर आप बेटर वे की अगर आप इन्हें छिलकों के साथ में यूज करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. अगर नहीं करते हो, छिलके अगर आप हटाते हो तो उसे भी आप कई तरह से यूज कर सकते हो, ये आज हम देखेंगे. तो देखो, आज मैं आपको ना कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जिनमें पोषण भी बढ़ेगा और जो हमारा कचरा निकलता है किचन में तो फूड वेस्ट भी कम होगा. तो देखो, सबसे पहले ना हम देखते हैं कि गाजर का जो छिलका होता है, गाजर जो है आप इसे अच्छे से जब लेके आते हो मार्केट से तो आप एक काम कर सकते हो, आपने इसे पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है. हो सकता है तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप इसके अंदर डाल दो तो इससे क्या होगा ना, इसके ऊपर की जितनी भी मिट्टी जम्स है वो पूरी निकल जाएगी. इसे बाद में आप क्या करोगे, अच्छे से रगड़ कर रनिंग वाटर जो होता है वो टैप के नीचे आपको इसे वॉश कर लेना है. इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो. अभी देखो, इसमें गाजर का जो छिलका होता है इसमें कई मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए गाजर को जस्ट आपने अच्छे से धो लेना है और वैसे ही खाना है. अगर आप इसके छिलके हटाते हो तो आप इसे चटनी बनाकर यूज कर सकते हो अच्छे से. ओके, इसके बाद में जो खीरा होता है, तो खीरे में भी जो छिलका हम हटाते हैं इसमें भी कई मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन के होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम निकाल देते हैं. इसलिए खीरे को भी अगर हो सके तो आपको छिलके के सहित ही इसे खाना है. ओके, अगर आपने छिलका हटाया तो फाइबर जो है वो उसमें से निकल जाएगा, है ना, बहुत कम मात्रा में बचेगा. सो इसके लिए कभी भी याद रखो कि अच्छे से धोना है, वॉश करना है उसे और फिर आपको छिलके के साथ ही इसे यूज करना है. उसके बाद में जो फूल गोभी, हम सब्जी के लिए जो फूल गोभी लाते हैं तो उसके जो डंठल होते हैं, हमें आदत क्या होती है कि हम क्या करते हैं ना कि उसके जो फूल होते हैं वो यूज में ले लेते हैं और डंठल जो है वो हम फेंक देते हैं. तो आपको वो डंठल फेंकने नहीं है, इन्हें फेंकने की बजाय आप इसे सब्जी में यूज कर सकते हो, आप इसे सूप्स में यूज कर सकते हो, इसके पराठे बना सकते हो, या जो वेजिटेबल स्टॉक हम बनाते हैं उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो. तो देखो, मतलब बहुत ज्यादा जो फायदा है ये आप निकाल कर फेंक दे रहे हो. सो इसके लिए बेटर वे कि आप जो भी चीजें हैं जो हम फेंकते हैं इसको या तो वैसे ही रहने दो या तो फिर उससे कोई दूसरी चीज बनाकर उसे यूज करो. इसके बाद में जो तुराई आती है, ओके, हम क्या करते हैं उसके जो ऊपर के हरे छिलके होते हैं उसको हम हटा देते हैं. तो क्या करना है, आपने तुराई को अच्छे से वॉश कर लेना है, इसके बाद में उसके छिलके हटाने हैं. ये हटाए हुए जो छिलके हैं इसे आपने फेंकना नहीं है, ऑलरेडी आपने इसे अच्छे से धो के वॉश कर लिया है. इसकी आप चटनी बना सकते हो, ठेचा बना सकते हो. जो चटनी है आप इसमें मूंगफली के दाने, जैसे छिलके आपने ले लिए जो तुराई है उसके अंदर आपने मूंगफली के दाने ऐड करना है, भुने हुए लहसुन ऐड करना है, हरी मिर्च ऐड करना है और इसे दरदरा आपने पीस लेना है. बहुत ही टेस्टी ऐसी दूड़के की जो चटनी है वो बनती है, जिसे हम तुराई बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है. तो जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जो अच्छी चीजें है वही हम कहीं ना कहीं फेंक रहे हैं. इसके बाद में कद्दू का जो छिलका होता है, कोशिश करिए कि जो कद्दू का छिलका है उसके साथ में ही आप सब्जी पकाए वो निकालना ही नहीं है, अच्छे से वॉश करके वैसे ही कद्दू को आपने यूज करना है। अगर आप इसे हटा देते हो तो जो सूप बनाते हो तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हो, वेजिटेबल स्टॉक जो बनेगा उसमें आप इसे अच्छे से धो के डाल दीजिए तो आप उसमें भी इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम आलू का छिलका होता है तो आलू का छिलका भी हटाने की बजाय हम एक चीज कर सकते हैं कि आपने इसे क्या करना है ना, अच्छे से पानी में भिगो के रख देना है ताकि इसकी जो मिट्टी है ऊपर की वो पूरी तरह से जो है निकल जाए, और उसके बाद में आप आलू को छिलके के साथ में ही यूज कर सकते हो, छिलका आपको हटाना नहीं है क्योंकि इसमें कई मात्रा में फाइबर होता है, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। तो हमेशा याद रखो कि आलू जब भी यूज कर रहे हो किसी भी चीज में तो इसे अच्छी तरह से धो लेना है और छिलके सहित भी आपको इसे पकाना है इस तरह से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम फेंक देते हैं, वो हमें फेंकना नहीं है, उसे हमें यूज करना है। लेकिन हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि हर छिलका खाने योग्य नहीं होता है, ओके। सब्जियों को आपको अच्छी तरह से धोना जरूरी है, इसके बाद में जिस भी सब्जी का छिलका खाने योग्य नहीं है उसे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, छिलका खाने से ही सब्जी ज्यादा पौष्टिक हो जाती है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन खाने योग्य जो होते हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल करके हम कई मात्रा में फाइबर, न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिल सकते हैं वो हम ले सकते हैं और फूड वेस्ट है इसको हम कम कर सकते हैं। तो देखो, जो चीज हमें कचरा लगती है ना उसमें भी हम यूज करके विटामिन्स जो है वो हम ले सकते हैं, और थोड़ी सी समझदारी अपनी यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि जो फूड वेस्ट है उसे बचा सकते हैं। और इससे और एक चीज होगा कि मान लो आप आज कोई चटनी बना रहे थे, ओके, तो खर्चा होगा ना, आपने पुदीना लाना है, हरा धनिया लाना है जैसे, लेकिन वही अगर हम ये जो छिलके हैं इससे अगर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका खर्च भी जो है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इससे हमें पोषण भी मिलेगा। और अगर हम देखना चाहे तो जो शकरकंद होता है इसका भी छिलका, इसमें भी देखो फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद में कद्दू होता है, कद्दू में भी फाइबर होता है, इसका भी छिलका, चुकंदर, इसमें भी फाइबर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसका हमें क्या होता है ना, हर चीज का छिलका निकालने की आदत होती है, तो हर चीज का छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसे अच्छे से आप धो लो ताकि इसके बाहर जो भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स जो भी लगे हुए हैं या मिट्टी जो भी लगा हुआ है वो अच्छे से निकल जाए। इसे प्रॉपरली वॉश करके आप इसे यूज कर सकते हो। अभी देखो, नींबू का भी छिलका होता है जिसे हम फेंक देते हैं, तो आपने नींबू का छिलका भी फेंकने के बजाय अगर आप इसे सुखाकर पाउडर बनाते हो तो आप इसे मसालों में यूज कर सकते हो, ओके, या फिर आप इसे क्लेंजिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में धनिया, हरा धनिया जो होता है, इसके जो डंठल होते हैं इसमें बहुत ज्यादा कई मात्रा में विटामिन्स होते हैं जो हमें हेल्दी रहने के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो सिर्फ पत्ते ही नहीं, उसके डंटल का भी हमें यूज जो है वो करना चाहिए। जैसे वेजिटेबल स्टॉक बना रहे हो उसमें आप धनिया के डंटल डाल सकते हो, आप इसकी चटनी बनाओगे वो भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसके बाद में दाल, पुलाव, सूप, इसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो, इससे टेस्ट भी जो है वो दुगना हो जाता है। तो इस तरह से जो हरा धनिया होता है उसके डंटल भी आप यूज में ला सकते हो। सिर्फ याद रखना है कि जब आप हरा धनिया जैसे चुन रहे हो या फिर तोड़ रहे हो तो आपने क्या करना है, जो मोटे वाले जो डंटल होते हैं वो आपने नहीं लेने हैं, जो एकदम बारीक से होते हैं वो वाले डंटल जो है वो आपने यूज करने हैं, उसे आपने नहीं फेंकना है, ठीक है, मोटे मोटे आपने फेंक देना है। इसके बाद में तरबूज का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है, सफेद हिस्सा, तो उसका छिलका हटाने के बाद जो बचता है सफेद हिस्सा उससे भी आप सब्जी बना सकते हो, कोफ्ते बना सकते हो, मुरब्बा बना सकते हो, ये भी चीजें उससे बहुत अच्छी बनती है। अगर आप वो सफेद हिस्सा जो है जिसे हम फेंक देते हैं उसको फेंकने की जगह है, अगर आप उसको कोफ्ते बनाकर यूज करोगे तो आपकी जो सब्जी है ना इसका टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाएगा और इसका जो मुरब्बा है वो भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके यूज कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आपने जो चीजें है वो यूज कर लेनी है फेंकने की जगह। अभी जब हम वेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो आपको वेस्ट से रेसिपी कैसे बनाना है वो भी बताती हूँ कि जैसे वेजिटेबल स्टॉक बनाना है आपको तो आपने क्या करना है, जिसमें भी आप यूज करते हो, मान लो आपको अगर सूप्स बनाने हैं, सॉसेस बनाना है, ग्रेवीज बनाना है, पुलाव बनाना है, तो आप इसमें एज अ बेस पानी की जगह पे आप वेजिटेबल स्टॉक जो है वो यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो आपने गाजर ले लिया, छिलके के साथ आप एक गाजर ले लोगे, उसके बाद में एक आपने प्याज ले लेना है कटा हुआ, उसके बाद में सेलरी जो होती है वो आपने एक से दो स्टॉक ले लेने हैं, उसके बाद में फूल गोभी ये आपको थोड़ी सी ले लेना है। अगर गोभी नहीं लेना है आपको तो आप इसकी जगह पे जो मैंने अभी बताया कि फूल गोभी का हम जो डंटल वाला पार्ट है ना, जो हम फेंक देते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में लहसुन ले लेना है 4 से 5 कलियां, बे लीफ लेना है एक आपको, 5 से 6 आपने इसमें ब्लैक पेपर्स डाल देना है। इसके बाद में पानी आपको ऐड करना है 2 से 2.5 लीटर, ठीक है। एक पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत हल्का सा सॉल्ट आपको डालना है, सॉल्ट आपको वेजिटेबल स्टॉक जहां यूज कर रहे हो उसमें भी होता है, तो जब वेजिटेबल स्टॉक बना रहे हो इसमें सॉल्ट आपको बहुत कम मात्रा में यूज करना होता है। जो हरे धनिये के डंटल है, जो बारीक वाले हैं ना, बहुत मोटे वाले नहीं, वो आपने ले लेने हैं, ठीक है। ये सभी सामग्री आपने एक बर्तन में लेना है, सब्जियों को, वेजिटेबल्स को आपने चॉप कर लेना है। इसको क्या करना है, आपने 1/2 से 1 चम्मच आपको ऑयल डालना है और 2 से 3 मिनट आपको इसे सौते करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद में गैस की फ्लेम जो है ये आपने सीमर पे कर देना है और आपको 30 से 40 मिनट तक आपको इसे अच्छे से उबलने देना है, ठीक है। उबलने के बाद में इसे हल्का सा ठंडा करना है और आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है, तो जितनी सब्जियां है ये चलनी पे बच जाएगी और जो नीचे पानी आ जाएगा उसे आप वेजिटेबल स्टॉक बोलकर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपको अगर सूप बनाना है तो सूप में आपने इसे यूज कर लिया, टोमेटो सूप में यूज कर सकते हो, स्वीट कॉर्न सूप में यूज कर सकते हो, मनचाओ सूप में यूज कर सकते हो, है ना, वेज क्लियर सूप होता है उसमें, तो जहां पे भी सूप बना रहे हो वहां पे ये वेजिटेबल स्टॉक जो है इसका यूज आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप पुलाव बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, तो राइस को स्टॉक में कुक करने से स्वाद बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से पुलाव बिरयानी में भी आप वेजिटेबल स्टॉक का यूज है ये आप कर सकते हो। उसके बाद में पास्ता बना रहे हो, मैक्रोनी बना रहे हो, तो पास्ता सॉस में भी आप इसे यूज कर सकते हो। जब हम सब्जियों के लिए ग्रेवीज बनाते हैं, सॉसेस बनाते हैं, जैसे व्हाइट सॉस, मशरूम की ग्रेवी, कॉन्टिनेंटल सॉसेस जो बनते हैं, उन सभी में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैश पोटैटो, इसे भी थोड़ा सा स्टॉक डालकर आप क्रीमी और फ्लेवरफुल बना सकते हो। जब हम नूडल्स बनाते हैं, स्टिर फ्राई बनाते हैं, तो सॉसेस में भी थोड़ी मात्रा में आप इसे यूज कर सकते हो। किनवा बना रहे हो, दलिया बना रहे हो, तो कुकिंग में जब वाटर यूज करते हैं तो वाटर की जगह पर अगर आप वेजिटेबल स्टॉक यूज करते हो तो इससे क्या होता है, इसके जो विटामिन्स है ये भी बढ़ जाएंगे और पानी की जगह अच्छा सब्स्टिट्यूट अगर आप यूज करते हो वेजिटेबल स्टॉक को तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आता है, ठीक है। जब आप सब्जियां बना रहे हो, है ना, स्टीम या फिर सौते, जो भी चीज कर रहे हो, तो इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए भी आप वेजिटेबल्स स्टॉक का यूज कर सकते हो, ठीक है। सूप बेस्ड जो ग्रेवीज होते हैं, जैसे चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेसिपीज, इसमें भी आप वेजिटेबल स्टॉक को यूज कर सकते हो। देखो वेजिटेबल स्टॉक को और एक चीज है, आप बनाकर आइस क्यूब ट्रे जो होता है उसमें आप भरकर इसे फ्रीज कर सकते हो, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़ी तो बस आपने 2-3 क्यूब्स निकाले और निकाल कर आपकी रेसिपी जो है उसमें आपको डाल देना है। तो इस तरह से अगर आपको मतलब स्टोर करना आसान करना है तो आप वेजिटेबल स्टॉक को इस तरह से क्यूब्स में भी स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपको लगता है तब आप इसे यूज भी कर सकते हो। अभी देखो तोरई के जो छिलके होते हैं इससे भी आप चटनी बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, तो इसकी भी रेसिपीज जो है ये आपको बताती हूँ। ठीक है, तोरई के छिलके की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं कि हमें क्या क्या लगेगा। ठीक है, सो तोरई के छिलके ले लेने हैं आपको 1 कप। उसके बाद में भुने हुए मूंगफली ले लेने हैं आपको, दाने जो होते हैं 2 टेबलस्पून। ठीक है, इसके बाद में आपने लहसुन की कलियां ले लेनी है 4 से 5। इसके बाद में हरी मिर्च आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हो या 2 से 3 अगर छोटी साइज की है तो। इसके बाद में जीरा ले लेना है आपने 1/2 टीस्पून। उसके बाद में तिल हमें लगेगा 1/1 टीस्पून। इसके बाद में हमने नींबू का रस लेना है 1 टीस्पून। नमक हमें स्वादानुसार लगेगा और थोड़ा सा लगेगा हमें यहाँ पर तेल। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है ना, एक पैन ले लेना है। ओके, पैन में आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल डाल देना है। तेल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, आप ज्यादा तेल नहीं खाते हो तो कम तेल में भी आप इसे बना सकते हो। बस ऐसा है कि थोड़ा सा तेल ज्यादा डालोगे तो टेस्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आएगा। तेल में हमें जीरा का तड़का दे देना है। ठीक है, जैसे ही तड़का हो जाता है जीरा का देना, इसके बाद में हमने इसके अंदर लहसुन ऐड करना है और हरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से भूनना है। हरी मिर्च आप वैसे भी डाल सकते हो या तो कट करके भी आप इसे डाल सकते हो। अभी आपने तुरई के छिलके जो हमने अच्छे से पहले धो ली थी तुरई, और उसके बाद में हमने छिलके हटाए जो एकदम क्लीन हो, ओके, वो छिलके आपने इसके अंदर डालना है। अभी गैस की फ्लेम जो है आपको इसे एकदम लोवेस्ट पे कर देना है, सिमर पर। ठीक है, 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप थोड़ा सा कच्चा टेस्ट पसंद करते हो तो इतना नहीं भी भूना तब भी चलेगा, एक 30 से 40 सेकंड भी आपने अगर इसे भून लिया तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छे से भून लिया, इसके बाद में मूंगफली के दाने और तिल डालकर इसे भूनना है। इसे हल्का ही भूनना है आपने, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, और गैस की फ्लेम भूनते समय सिमर पर ही रखना है। अभी आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेना है और इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठीक है, गरम गरम आप पीसोगे तो इसमें बहुत ज्यादा पसीना आ जाएगा और इससे हो सकता है कि टेस्ट भी कम हो जाएगी और ये जल्दी से खराब भी हो जाता है, रहता नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरह से सभी चीजों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद में आपने इसे मिक्सी के जार में ले लेना है और इसे आपको दरदरा पीसना है। देखो अगर आप बहुत स्मूथ पसंद करते हो चटनी तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे दरदरा पीसते हो ना तो इसका टेस्ट जो है ये थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। तो आपके ऊपर है, आपको अगर दरदरा रखना है तो दरदरा पीसिए, अगर आपको स्मूथ कंसिस्टेंसी पसंद है चटनी में तो आप इसे स्मूथ भी पीस सकते हो। ठीक है, पीस लिया, अभी हल्का सा नमक डालना है आपको इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स दे देना है। ठीक है, लास्ट में जब आपने इसे बाउल में निकाल लिया, पूरी चटनी मिक्सी के जार में से आपने एक सर्विंग बाउल में निकाल लेना है, और इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके अंदर नींबू का रस निचोड़ना है। आप अपने टेस्ट के अनुसार या 1/2 नींबू का रस भी आप इसके अंदर निचोड़ सकते हो। ठीक है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आपने इसे एक एयर टाइट डिब्बे में रखना है और एयर टाइट डिब्बे में रख कर आप इसे फ्रिज में 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हो। बस मेक श्योर कि आपका डिब्बा जो है ये एयर टाइट होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर ना जाए। ठीक है, अभी आप इस चटनी को पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हो, भाकरी के साथ में बहुत अच्छी लगती है, जो रोटी बनती है उसके साथ में अच्छी लगेगी, दाल चावल के साथ में आप इसे खा सकते हो, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, प्लस हमें बहुत सारे विटामिन्स भी मिलते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। तो देखो इस तरह से तुराई के जो छिलके होते हैं उसका यूज हम हमारे किचन में और खाने में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अभी हम तुराई के छिलके से ही इंस्टेंट सब्जी देखेंगे कि तुराई के छिलके से आप फटाफट से सब्जी कैसे बना सकते हो। ठीक है, सो तुराई के छिलके ले लेने हैं आपने 2 कप। सबसे पहले हम सामग्री क्या क्या लगती है वो देख लेते हैं। इसके बाद में हमने 1 प्याज ले लेना है जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद में हमें लहसुन की कलियां लगेगी 1/5 से 6, आप अपने पसंद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, हरी मिर्च लगेगी 2 से 3, मूंगफली के दाने का कोटन लगेगा हमें 2 टेबलस्पून, राई लगेगी हमें 1/2 टीस्पून, जीरा भी लगेगा हमें 1/2 टीस्पून, उसके बाद में हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो या तो फिर 1/2 टीस्पून आप डाल सकते हो, नमक लगेगा हमें स्वादानुसार और तेल लगेगा हमें 1 टेबलस्पून। ठीक है, सभी सामग्री को पहले निकाल लेना है, उसके बाद में आपने एक पैन में तेल गर्म करने के लिए रख देना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो आपको इसके अंदर राई और जीरा का तड़का लगाना है। ठीक है, कभी भी याद रखो जब भी सब्जी बना रहे हो तो तड़का जो है ये अच्छे से लगना चाहिए। अब इसके अंदर आपको लहसुन डालना है, प्याज डालना है और हरी मिर्च डालकर अच्छे से भूनना है। ठीक है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है, इसके बाद में कटे हुए तुराई के छिलके आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। इसे भी हमें 1 से 2 मिनट गैस की फ्लेम जो है ये कम रहना चाहिए, कम आंच पर ही आपको इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको इसे ढक देना है और ढककर 5 से 7 मिनट तक आपको इसे पकाना है, जब तक कि ये तुरई के छिलके जो है ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें इसके अंदर हल्दी डाल देना है, लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और एंड में आपको इसके अंदर मूंगफली के दाने का कूट डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे भी हमें 1 से 2 मिनट चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है और फिर गैस की फ्लेम जो है वो आपको ऑफ कर देनी है। आप इस तुरई की सब्जी को भाकरी के साथ में खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है जब आप इसे भाकरी के साथ में खाते हो, या तो रोटी के साथ में भी आप इसे सर्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है आपको किसके साथ खाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो वेस्ट हम फेंक देते हैं तुराई की छिलके जो होते हैं वो, उससे आप बढ़िया सी चटनी सब्जी इस तरह से आप बना सकते हो, और भी कई सारी डिशेस है। पर अभी तुराई के छिलकों की जगह हम देखते हैं कि जो तरबूज हम बहुत बड़ा बड़ा लेके आते हैं घर में और इसका व्हाइट पोर्शन जो है पार्ट, ठीक है, ये हम फेंक देते हैं जो कि बहुत ज्यादा होता है ना तरबूज में, तो इसे आप कैसे यूज कर सकते हो और विटामिन जो है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा उसके आप ले सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी हम एक सब्जी देखते हैं, तरबूज का जो व्हाइट पार्ट होता है उससे बनी हुई सब्जी। तो आपको क्या करना है, तरबूज आप जब लेके आओ तो लाल वाला पोर्शन आपने निकाल लिया, इसके बाद में जो व्हाइट वाला पोर्शन बचता है इसे आपको क्यूब्स में कट कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से आप सब्जी कट करते हो उसी तरह से आपको ये कट कर लेना है। ठीक है, अब प्रिपरेशन जो है उसकी सामग्री हम एक बार देख लेते हैं। अभी आपको जो तरबूज का सफेद पार्ट है वो लगेगा 2 कप, जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है। ओके, इसके बाद में आपको एक प्याज ले लेना है, इसे भी आपको फाइनली चॉप कर लेना है। इसके बाद में हरी मिर्च लेना है 2 से 3 या फिर 1 से 2 भी, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। लहसुन की कलियां लेना है 3 से 4, राई लेना है हमें 1/2 टीस्पून, उसके बाद में जीरा भी लगेगा हमें 1/2 टीस्पून, हल्दी लगेगी हमें 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ठीक है, धनिया पाउडर लेना है 1 टीस्पून, मूंगफली के दाने का कूट लेना है हमें 2 टेबलस्पून, नमक लेना है स्वादानुसार और तेल ले लेना है हमें 1 से 1.5 टेबलस्पून, हरा धनिया लगेगा एंड में गार्निशिंग के लिए। ठीक है, इस तरह से सभी सामग्री जो है ये आपने निकाल लेना है तड़का देने से पहले। अभी देखो, सबसे पहले आपको एक पैन रखना है हीट करने के लिए। ठीक है, पैन जैसे ही हीट हो जाता है इसके अंदर हमें राई और जीरा डालकर इसे तड़का दे देना है, है ना, तेल अच्छे से गरम कर लेना है, गरम तेल में ही राई और जीरा डालना है, ठंडा तड़का कभी भी नहीं देना है। ओके, इसके बाद में जैसे ही राई और जीरा बजने लगे उसके बाद में हमें इसके अंदर लहसुन डाल देना है और लहसुन को अच्छे से सुनहरा होने देना है। ठीक है, लहसुन आधा हो जाता है तुरंत से हमें इसके अंदर हरी मिर्च और प्याज डाल देना है और तीनों भी चीजों को साथ में अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ठीक है, गैस की फ्लेम आप मीडियम रख सकते हो। लहसुन प्याज हरी मिर्च ये अच्छे से सुनहरा हो जाता है, इसके बाद में हमें इसके अंदर मसालों को ऐड करना है। ठीक, ठीक है, हल्दी डाल देना है, लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है, धनिया पाउडर है वो भी आपको डाल देना है। याद रहे कि जब भी मसाले डालो ये जलने नहीं चाहिए, इस तरह से आपको इन्हें भूनना होता है, ठीक है। उसके बाद में जो तरबूज का सफेद पार्ट है ना, हरा वाला पार्ट छोड़कर जो सफेद वाला पार्ट था जो हमने निकाल के रखा हुआ था कि उसमें कट करके, ये आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। इसे भी आपको एक आधा से एक मिनट तक आपको इसे अच्छे से भून लेना है, ठीक है। इसके बाद में आप इसके ऊपर नमक डाल दोगे टेस्ट के अनुसार अपने, और इसे अच्छे से मिक्स दे देना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन रखना है। ढक्कन रखकर आपको इसे अच्छे से सॉफ्ट होने देना है। एक 8 से 9 मिनट लगेगी इसे सॉफ्ट होने में। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो पे रखना है, ठीक है। आपको ढक्कन को रखने के पहले इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, पकने के हिसाब से, जितना भी आप जिस भी कंसिस्टेंसी में आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी जो है वो ऐड कर सकते हो। अगर पानी की जगह आपको और भी कुछ अच्छा सब्स्टिट्यूट चाहिए तो वेजिटेबल स्टॉक, जो हमने देखा वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनाना है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो ताकि विटामिन जो है वो एनहांस हो और भी, ठीक है। 7 से 8 मिनट इसको ढक के रख दिया। बाद में आपने इसे चेक करना है कि जो व्हाइट वाला पोर्शन हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। जब वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए, है ना, जो सफेद भाग है वो, उसके बाद में हमें इसके अंदर मूंगफली के दाने का कूट डालना है और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भूनना है, ठीक है। भूनने के बाद में गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। और इसमें आप और एक चीज कर सकते हो, इसे अगर आपको और ज्यादा टेस्टी बनाना है तो जैसे हमने मूंगफली के दाने का कूटन डाला ना, तो थोड़ा सा महाराष्ट्रियन स्टाइल में और भी थोड़ा सा ये स्वादिष्ट बनेगी अगर आप इसके अंदर यूज करते हो ताजा नारियल, है ना, जो फ्रेश कोकोनट होता है, इसे आपने ले लेना है और इसको आपको ग्रेट करना है ना, कद्दूकस करके आपने इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट जो है वो आपने ऐड करना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप ये सब्जी में डालकर, कोई भी सब्जी में डालकर टेस्ट जो है वो एनहांस कर सकते हो। तो वो आपने ऐड कर देना है जब आप मूंगफली के दाने का कूटन ऐड कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा। तो बस गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। चपाती के साथ में, रोटी के साथ में, भाकरी के साथ में आप इसे एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा ना कि जो भी चीजें हम फेंक देते हैं जिसमें कई मात्रा में विटामिन्स होते हैं, फाइबर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो हम फेंक देते हैं उसे हम कैसे हमारे किचन में अच्छे से यूज कर सके ताकि जो विटामिन्स हम फेंक रहे हैं वो हमें मिले, ठीक है। तो छिलके खाने से देखो सब्जी और भी ज्यादा हेल्दी बन जाती है, है ना। दूसरी चीज है कि आपके थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते हैं, ओके, ये तो जस्ट फन का पार्ट था। और तीसरी चीज है कि जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है ना, फाइबर, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो भी हमें अच्छी मात्रा में मिल सकते हैं। सो इस तरह से आपने सभी चीजों का यूज करना है और अपना फूड वेस्ट भी कम करना है, ठीक है। सो कैसी लगी आपको रेसिपीज और आपने कौन सी रेसिपीज अभी तक ट्राई की ये हमें जरूर बताइए। स्टे ट्यून्ड विद MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तो

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: जवाब। अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा।
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
2: अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
3: क्या?

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
2: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
3: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।

0: तुम्ही ट्यून केलंय एमजीएम रेडिओ 90.8 FM साथ है तो बात है। मी आहे आरचे भूषण। मित्रांनो, आज एक खास दिवस आहे। आज आहे ईद ए मिलाद आणि देशभरात ईद ए मिलादचा उत्साह पाहायला मिळतोय। पैगंबर हजरत मोहम्मद यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा केला जाणारा हा दिवस प्रेम, शांतता, बंधुभाव आणि माणुसकीचा संदेश देतो। ईदचा हा सण प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुख, समाधान आणि आनंद घेऊन येऊ हीच मनापासून इच्छा आणि सर्वांना ईद ए मिलादच्या खूप खूप शुभेच्छा। शो सुरू झालाय विथ आर जे भूषण ओनली ऑन एमजीएम रेडिओ 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
2: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए।
3: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrist, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
5: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स।
6: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
5: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
6: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: एक टाइम था जब हमारे जेब में ना तो कैश ही कैश होता था, और आज का एक टाइम है बस हमारे जेब में यूपीआई यूपीआई है। अगर किसी को कैश चाहिए होता तो छुट्टी के लिए भागम भाग करना पड़ती थी, फिर एटीएम की लाइन, कैश विदड्रॉ करो, वॉलेट में रखो, और पेमेंट के टाइम पर फिर वही टेंशन, यार छुट्टी हो गई सामने वाले के पास। लेकिन आज क्या है, 10 की चाय हो या फिर 100 का ऑटो हो या फिर 5000 की शॉपिंग का बिल हो, बस फोन निकालो, QR स्कैन करो, पिन डाल दो, टिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। और यही छोटी सी टिंग वाली साउंड ना तो आज इंडिया की डिजिटल रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा बन गई है, एक पहचान बन चुकी है, क्योंकि इंडिया का फेवरेट पेमेंट पार्टनर UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकरीबन इसको 10 साल हो गए हैं। जी हाँ, 2016 में UPI की जर्नी शुरू हुई थी। शुरुआत में शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था ऑनलाइन पेमेंट कौन करेगा इतना, और सबके पास स्मार्टफोन कहाँ से आएगी। लेकिन 10 साल में जो बदलती हुई तस्वीर हमने देखी, डिजिटल इंडिया तो हो ही रहा है, धीरे धीरे हर एक दुकान पर हमें UPI पेमेंट दिखाई देती है। सब्जी वाला, किराना शॉप, रेस्टोरेंट, मॉल, ऑटो रिक्शा, कहीं कहीं तो मैंने जो भीख मांगते थे उनके पास भी UPI पेमेंट देखी है। तो कुछ इस तरीके इतना तो QR कोड पूरे इंडिया में फैल गया पिछले 10 साल में। पहले पेमेंट करने के लिए बैंक डिटेल चाहिए होती थी, और आज बस एक मोबाइल नंबर चाहिए यानी कि UPI ID, और पैसे एक सेकंड में इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। और आज हम कहीं भी शॉपिंग करने गए तो पहला सवाल क्या पूछते हैं, छुट्टा है? ये नहीं, QR कोड है ना आपके पास। बाय द वे, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंडिया की स्टोरी है जहाँ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हर आम इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा बन गई है। UPI ने हमें ये भी सिखाया कि डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ बड़े सिटीज और एक्सपेंसिव गैजेट नहीं, डिजिटल इंडिया का मतलब है एक छोटे दुकानदार के हाथ में स्मार्टफोन, एक QR कोड और कस्टमर के लिए इजी पेमेंट। सो 10 ईयर ऑफ UPI कन्वीनियंस एंड डिजिटल इंडिया, और जर्नी अभी बाकी है। हैप्पी 10 ईयर ऑफ UPI इंडिया एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: Buy one get one free. होय होय खर एक ज्ञान एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
4: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
5: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
6: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765829991.

जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के दाम बढ़ जाते हैं। फिलहाल यही सिचुएशन चल रही है। जी हाँ, मतलब मोहब्बत किसी इंसान से नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मेरे जैसे चाय लवर्स ने चाय से मोहब्बत की है। और अभी हमें पता चल चुका है कि यार चीनी के दाम भी अब आसमान छू रहे, 70-72 कहीं की 75 रुपए किलो चीनी हो गई है। और इस वजह से धीरे धीरे अभी चाय के भी दाम बढ़ने ही वाले है। तो वही ना कि हमने मोहब्बत की है चाय से और अब उसमें चीनी डालते है तो उसके दाम बढ़ गए, यानी कि चाय के दाम भी बढ़ने वाले है। गवर्नमेंट ने हमारी जिंदगी बचाने के लिए चीनी के दाम बढ़ाए है। सोचिए ना, आप कुछ दिनों त्योहार शुरू हो रहे, फिर हर कोई इंसान ना मिठाई खाएगा, फिर पेड़े खाएगा। मतलब इंडिया में चाहे फिर दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, कोई पैदा हुआ हो, कोई मर गया हो, कोई पास हुआ हो, किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने घर लिया है, किसी का दिल टूटा है, किसी का दिल जुड़ा है, किसी की शादी हो गई है, किसी तो सबसे पहले मुंह मीठा करते हैं। और चीनी के बगैर मिठाई अधूरी है। तो डायबिटीज के पेशेंट बहुत बढ़ रहे थे, शायद से डायरेक्ट असर हम सभी पर हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा, चलो यार ये लोग ऐसे तो मान नहीं रहे, हम कह रहे इनको डायबिटीज बढ़ रहा है, शक्कर कम खाओ, तो हम क्या करते, दाम बढ़ा देते है। गवर्नमेंट को हमारी इस वजह से इसके दाम बढ़े हैं। और हाँ, बस डायबिटीज नहीं, अब देखो हाँ इंडिया में ना तो बहुत सारे मोटे लोग भी बढ़ रहे थे, वजन बढ़ रहा, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि हम ना पेट्रोल में कुछ मिलावट करते ताकि लोगों की गाड़ियां खराब हो जाए और अपने आप पैदल चलना शुरू करे ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। तो यही इसके पीछे एक मकसद है और ये हमें बहुत लेट समझ में आ गया। तो थैंक यू गवर्नमेंट ना हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। खैर आप क्या ही करें, चाय की तो तलब लगी है। आज सुबह मैं चाय की दुकान पर चाय पीने गया था, भाई ने 2 रुपए बढ़ा दिया, 10 की चाय 12 को हो गई है। क्या ही बोले आप, क्या करना है, जिससे मोहब्बत होती है तो हम पैसे को नहीं देखते। आप भी जरा चाय की जिसकी लेकर आइए, मैं भी लेकर आता हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
3: Buy one, get one free. Hoi hoi, khara, ek gyan, ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwarkada Shyam Kumar ghiun aale aaye shandar offers.
2: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiva ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one, get one free.
3: Manje style hi double ani shopping cha anand hi double. Swatantra din sajra kara नव्या शॉपिंग सोबत
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: बेहतरीन तरीके से कमबैक हो गया है इमरान हाशमी का। जिस तरीके से आवारापन टू ने आजकल कमाई की है तो लग रहा है कि कमबैक तो परफेक्ट हो गया है। और वो एक कहते हैं ना कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, ये साबित भी हो गया है क्योंकि 19 साल के बाद आवारापन टू आई है। जब आवारापन पहली आई थी ना 2007 में, तब ये सबसे फ्लॉप फिल्म थी, तब ना तो फिल्म चली नहीं थी। उसके बाद फिर ये टीवी पर आई और उसके गाने हिट होने लगे, फिर धीरे धीरे लोगों को ये फिल्म की अहमियत और ये फिल्म कितनी अच्छी है वो समझ में आ गई। वैसे एक बात तो है यार, वक्त गुजरने के बाद ही लोगों को अच्छी चीज़ों की कद्र होती है, वैसी फिल्मों के साथ हो गया। एंड फिर इंतजार था आवारापन टू का और फाइनली वो रिलीज हो गई है। और जिस तरीके से उसने कमाई की, हाउसफुल शो की है, तो फिलहाल 142 करोड़ के ऊपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है आवारापन टू का। तो अब ये कलेक्शन ऐसा ही रहेगा या थोड़ा कम होगा, ये तो आप डिपेंड करेगा टॉक्सिक पर। मतलब अब दो दिन बाद टॉक्सिक रिलीज हो रही है एंड जैसे टॉक्सिक रिलीज होगी तो अपने आप इसके शोज कम होंगे। बट उसके पहले तो आवारापन ने बहुत अच्छी कमाई की है, सुपर डुपर हिट का टैग अपने नाम किया है। बाय द वे टॉक्सिक के ना और एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गए हैं, तो जिन्होंने अब तक नहीं किए तो कीजिएगा, क्योंकि यश की जो बेहतरीन फिल्म है जिसका सभी को इंतजार था और ट्रेलर ने तो तबाही मचाई है, तो देखने का भी वक्त आ गया है। तो देखा जाएगा कि KGF के बाद टॉक्सिक में किस तरीके का एक्शन हमें यश दिखाएंगे, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। तो आप बताइएगा कि आपको आवारापन टू कैसी लगी और टॉक्सिक का ट्रेलर आपको कैसा लगा। DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ Adnan इस पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
1: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मीडिया और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून
1: All is well with RJ Adnan.

एक ऐसी दुनिया जहाँ पर किसी महिलाओं को बस इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था क्योंकि वो बस महिला थी। और इसी बात से जुड़ा है आज के दिन, दैट्स कॉल्ड वुमेन्स इक्वेलिटी डे। 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वेलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की रूट ना तो अमेरिका की वुमेन्स सफ्रोज मूवमेंट से जुड़ी है जो कि 26 अगस्त 1920 को यूनाइटेड स्टेट में हुई थी और वहीं से शुरू हुआ था फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार। और इसी घटना को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स इक्वेलिटी डे पूरे दुनिया भर में। तो आज हम वही डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इंडिया में भी। और हाँ, इक्वेलिटी की जर्नी सिर्फ वोट देने के राइट तक लिमिटेड नहीं है। इक्वलिटी का मतलब होता है एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी, करियर में इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पेक्ट और अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने की फ्रीडम। क्योंकि इक्वलिटी का मतलब विमेंस को किसी से ऊपर रखना नहीं बल्कि उन्हें भी वही राइट, वही अपॉर्चुनिटीज और वही रिस्पेक्ट देना होता है जो एक इंसान होने के नाते हर किसी को मिलनी चाहिए और उसका हक है। तो आज विमेंस इक्वलिटी डे पर एक सवाल खुद से पूछिए, हम इक्वलिटी की बात सिर्फ कर रहे हैं या अपनी हर दिन की लाइफ में उसे एक्चुअली फॉलो भी करते है? बात गहरी है, खुद से पूछेगा। और महिलाओं को इक्वल रखना हम सबका फर्ज है, अधिकार है। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

26 अगस्त यानी कि विमेंस इक्वेलिटी डे। लेकिन आज एक सिंपल सा सवाल है, क्या हमारे सोसाइटी में महिलाओं को सच में इक्वेलिटी मिलती है क्या? कारण कहता है कि बराबरी का हक है, एजुकेशन का राइट है, काम करने का राइट है, अपनी चॉइस से लाइफ जीने का भी राइट है यानी कि अधिकार है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर क्या देखते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी डिफरेंस हमें नजर आता ही है। एक लड़के को लेट नाइट बाहर रहने पर कोई कुछ नहीं कहता और कहता है कि ध्यान से जाना, और वही बात एक लड़की की आती है तो इतनी रात को कहां बाहर जा रही है, क्यों जा रही है। लड़का करियर चूज करे तो एम्बिशंस, लड़की करियर चूज करे तो घर का क्या होगा, ये एक सवाल होता है। लड़का अपनी बात रखे तो कॉन्फिडेंस, लड़की अपनी बात रखे तो बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत खुद को शानी समझती है, ऐसा हमारी सोसाइटी कहती है। तो सवाल ये नहीं है कि वुमेन्स को इक्वेलिटी मिलती है या नहीं, सवाल ये भी है कि हम उन्हें इक्वेलिटी देने के लिए तैयार है या नहीं। इक्वेलिटी का मतलब वुमेन्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देना नहीं होता है, वरना बहुत लोग ये सोचते हैं यार इक्वेलिटी का मतलब होता है महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट देना वगैरह वगैरह। लेकिन इक्वेलिटी का मतलब है सेम रिस्पेक्ट, सेम अपॉर्चुनिटी, अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने का सेम फ्रीडम। और शायद इक्वेलिटी की सबसे बड़ी शुरुआत किसी लॉ से नहीं, हमारे घर से, हमारे सोच से और हमारे बिहेवियर से होती है। तो इस विमेंस इक्वेलिटी डे पर एक बात खुद से जरूर पूछे, मैं इक्वेलिटी की बात करता हूँ लेकिन क्या मैं इक्वेलिटी को अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ और महिलाओं को उतना ही अधिकार और उतना ही इक्वल समझता हूँ क्या? खुद से सवाल पूछेगा, सभी लड़कों से मैं ये कह रहा हूँ, समझे? जवाब आपको अपने आप मिलेगा। इक्वेलिटी का मतलब ये नहीं कि लेडीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, इक्वेलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीजें हम करते हैं वही चीजें, वही काम, उतनी ही सक्सेस और हर एक चीज महिलाओं को भी देना, दैट्स कॉल्ड इक्वेलिटी। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: नहीं नहीं, अपने स्टूडियो में कोई डॉग नहीं आया है, लेकिन आज इन्हीं का दिन है तो उसी पर हम बात तो करेंगे ही ना, क्योंकि डॉग्स ऐसे होते हैं जो बिना कहे ना तो बहुत सारा प्यार हमें करते हैं। और आज है 26th of August, यानी के इंटरनेशनल डॉग डे। डॉग्स को हम सभी लोग इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं, और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सच भी है। एक डॉग आपको बिना जज किए एक्सेप्ट करता है, आपका मूड बिना पूछे समझ लेता है, और आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, और जब आपको देखता है तो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। लेकिन आज का ये दिन सिर्फ डॉग्स की क्यूट फोटो सेलिब्रेट करने का नहीं है, हमारे आसपास ना तो ऐसे बहुत सारे डॉग्स हैं जो बेघर होते हैं, जिन्हें खाना पानी घर बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और उन्हें बस जरूरत होती है थोड़े प्यार की। आपने एक बात नोटिस की होंगी, आपके गली मोहल्ले में जो डॉग्स होते हैं ना, उन्हें ना तो बस आप प्यार से उनके सर के ऊपर हाथ फेरिएगा या फिर एक रोटी दीजिएगा। जब भी आप घर के बाहर निकलोगे, गली में रहोगे ना, तो आपके पास आएगा वो और दुम हिलाएगा। जितना आप उनसे प्यार करोगे, उनको डेली खाने को दोगे, तो यार उनसे अच्छा दोस्त आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। और बाकी आपकी गली की तो सिक्योरिटी फ्री में हो ही रही है, तो बस इन डॉग्स को चाहिए क्या होता है, प्यार चाहिए होता है। आज अगर आपके आसपास कोई डॉग है तो एक कटोरे में पानी जरूर रखिए, पॉसिबल हो तो कुछ खिला भी दीजिएगा। पॉसिबल क्या यार, खिलाना ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें अननेसेसरी परेशान या डिस्टर्ब मत कीजिए, ये अक्सर हम करते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, प्यार बस उन पेट एनिमल्स के लिए नहीं जो हमारे घर पर रहते हैं, जो कि अब पैसों से हम खरीद कर लाते हैं, प्यार हर एक एनिमल डिजर्व करता है। प्यार उनके लिए भी होना चाहिए जो हमारी गलियों में हमारे साथ रहते हैं और हमारे गली की हिफाजत करते हैं। तो हैप्पी इंटरनेशनल डॉग्स डे एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

சொல்லி.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: मुंह से मत लगा, चीज है बुरी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

अरे वम वम वम ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से करता, ऐसा रहता नम कैसा।

मस्त बहारो।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

फूलों के साए से खेलो चाहे कली से प्यार कर।

कोई कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी सी, छोटी रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।